ஓம் நம சிவாய ஸ்ரீ சரஸ்வத்தை மகாலட்சுமி மகாகல்யை ச நமோ நம. சதேதி சிந்துரவதனோ தேவோ யத் பாதபங்கஜ ஸ்மரணம் வசரமணிர்வதமசாம் ராசின் நசேதி விக்னானாம். ज्याप्रमाणे सूर्योगोलाबरोबर अंधारातला विनाश होतो त्याप्रमाणे गणरायाचं नामस्मरण पूजन चिंतन केलं असता विघ्नांच्या राशींचा विनाश होतो त्या श्री सिद्धिविनायकाचा जय जयकार असो. अनेकदा असं होतं की आपल्या प्रयत्नांना यश येत नाही, काही प्रमाणात नैराश्य दाटून येतं, त्यावेळेला त्याच ईश्वराची विनवणी केली जाते ती अशा पद्धतीनं.

जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हिट हिट हिट की आए रे तबियत हिट की हिट की जाए। टेढ़ा का टेढ़ा का टेढ़ा कदा, टेढ़ा का टेढ़ा का टेढ़ा कदा, टेढ़ा का टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा।

न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत बिजली बिजली आए, खेड़ा का डीड़ा कटो कटो, खेड़ा का डीड़ा

0: बन के हो गए 9 से 11 11-12 13-14 15-16 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 से 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। रूप की गर्मी 16 बनकर दिल में आग लगाए हित हित हित की आए तबीयत टिटकी टिटकी खाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए तबीयत टिटकी टिटकी खाए।
1: यार दीदी, यावेळेस मला तुझ्या वहिनीला खूप स्पेशल गिफ्ट द्यायचंय.
2: अरे मग दे ना, एवढा का विचार करतोयस?
1: पण काय द्यायचं तेच समजत नाहीये ना.
2: अरे रेडिओ विश्वास आहे ना,
1: म्हणजे
2: आता बर्थडे असो किंवा अनिव्हर्सरी, आपल्या प्रियजनांना आपण रेडिओ विश्वास वरन शुभेच्छा देऊ शकतो.
1: ते कसं काय?
2: फक्त 500 रुपयांमध्ये आपण या शुभेच्छा देऊ शकतो. तर लगेचच कॉल कर 8380-16512 किंवा 8380-16500 या नंबरवर.
1: हो.

0: पाठवायचेत ना, मग थांबायचं कशाला? विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नाशिक, IMPS सेवा, डिजिटल युगातील क्षणातील सुरक्षित सेवा, क्षणात पैसे ट्रान्सफर, 24 तास सुरक्षित आणि विश्वासार्ह। विश्वास बँक, तुमच्या प्रत्येक व्यवहारात विश्वास।
1: सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तन्नूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तन्नूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों।
2: आपल्या पूर्वजांची आठवण, संस्कार, समृद्धी जपण्याची परंपरा म्हणजे पितृपक्ष। या पितृपक्षात अढावतकरांकडे गोल्ड ज्वेलरी बुक करा।
3: बुकिंग पासून खरेदी पर्यंतचा सर्वात कमी रेट बुक करण्याची सुवर्ण संधी, सोबत हमखास भेट वस्तू।
2: विश्वास नाशिककरांचा।
3: अढावतकर ज्वेलर्स, अगोरा कॉम्प्लेक्स, कॅनडा कॉर्नर।

0: आपने गीत?
1: जहाँ तुमने सुना।
0: रात को भी आप यही गीत गा रहे थे, क्यों गाया करते हैं आप इसे?
1: इसलिए कि तुम इसे पसंद करती हो।
0: नहीं, क्यों परेशान करते हैं आप मुझे?

आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हिट हिट हिट की आए रे तबियत हिट की जाए। खेड़ा का ढेरा का ढेरा कदा, खेड़ा का ढेरा का ढेरा कदा, खेड़ा का ढेरा का ढेरा।

न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत बिस्की बिस्की आए, खेड़ा का डीड़ा का डोर डोर, खेड़ा का डीड़ा का डोर डोर।

0: हमारे पंछी बन के हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। हमारे पंछी बन के हो गए 9, 10, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। रूप की गर्मी 16 बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत पिटकी पिटकी खाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत पिटकी पिटकी खाए।
1: नमस्कार, मी अजित बुरे, आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ। तुमचं जगणं, तुमचा आवाज, रेडिओ विश्वास।

चिंता दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: काटे के बूट पर, क्यों भाई मैंने ठीक कहा।
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना